0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: दिल से जो निकलती है

दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल दे
4: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली ढेर गर्जिदली कड़ी दली
3: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रौड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
4: और दोनों मालूमातों दे पारा पदगल नंबर काल कवले शे
3: 0319-55-23-404।

जी साहब, मैंने कहा मजुमा को मुबारक दिन, और आप ये आवाज़ सुन रहे हैं अपने इलाके के FM। अगर आप ट्रांक में मौजूद हैं तो आप सुन रहे होंगे रेडियो अमन को 88.4 को, और अगर आप पहाड़पुर में मौजूद हैं तो आप सुन रहे होंगे रेडियो पैगाम 97.4 को। और अगर आप डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं और अगर आप डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं तो यकीनी बात है आप सुन रहे होंगे ग्लोबल FM 91 डे खान को। तो जनाब, इन तमाम तीनों शहरों, तीनों FM फ्रिक्वेंसी के ऊपर सुनने वाले तमाम हम सामीन इकराम को, हम किसन के प्रोग्राम में आप सभी को ढेर सारा वेलकम कहते हैं।

अलावा केसर नेचुरल पाकिस्तान के 3 दर्जन के करीब प्रोडक्ट जो है आपकी आपके डिफरेंट मसाइल को, आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए नेचुरल अज्जा से बने हुए ये इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट आपके शहर में मौजूद हैं। और जैसे कि अगर आप टांक में मौजूद हैं तो केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारी दुकानें हैं जनाब जहाँ पर आप जाके केसन के प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप दुकानदार हजरात हैं और अगर आपको अपनी दुकान के लिए केसन के प्रोडक्ट चाहिए और आप इनको अपनी दुकान के ऊपर सेल करना चाहते हैं, या लोग आपके पास आते हैं और केसन के प्रोडक्ट तलब करते हैं, जैसे केसन का हेयर ऑयल, केसन का शैम्पू, केसन की नाइट क्रीम जिसे हम ज़ाफरानी क्रीम कहते हैं, केसन की ग्लूटा वाइट क्रीम, केसन के फेस वाशेस जैसे गो पिंपल फेस वाश, ग्लूटा वाइट फेस वाश, चारकोल फेस वाश, या फिर लवली फेस वाश, या फिर केसन के सोप जैसे कि ज़ाफरानी सोप, जैसे कि मिल्की सोप, जैसे कि गो पिंपल सोप, जैसे कि कोजिक एसिड सोप, जैसे कि राइस शाइन सोप, या फिर केसन का उपटन सोप, या फिर केसन का मिल्की सोप। लेकिन अब इसके अलावा हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे कि आपके मोटापे को कम करने के लिए केसन की वेट कम, पेट कम, पक्की, इसके साथ साथ हाजमे को ठीक करने के लिए केसन का हाजमा कंट्रोल सीरम, या फिर आपके पुराने से पुराने दर्दों को ख़त्म करने के लिए केसन नेचुरल पाकिस्तान का केसन शिफायदार। तो अगर टांक में मौजूद है और अपनी दुकान के लिए होल सेल के ऊपर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप अल मक्का जर्नल स्टोर, ठीक है जनाब, इसके अलावा अब्दुल्ला जर्नल स्टोर अफसर खान प्लाजा के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको अब्दुल्ला जर्नल स्टोर मिलेगा, आपको मक्का जर्नल स्टोर मिलेगा और हाजी जर्नल स्टोर इन टाउन। इसके अलावा अगर आप सदर प्लाजा में जाएंगे तो वहां पर है फैसल गिफ्ट सेंटर, उसके साथ दुबई जर्नल स्टोर, ठीक है जनाब, उसके साथ कराची जर्नल स्टोर एंड सिटी जनरल स्टोर। जी जनाब, सदर प्लाजा के अंदर अक्सर मैं इन दुकानों के नाम लेता रहता हूँ आपके सामने, फैसल गिफ्ट सेंटर, दुबई जनरल स्टोर, सिटी जनरल स्टोर एंड कराची जनरल स्टोर। जी जनाब, इनके पास आप किसन के प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बरकी टावर है टांग के अंदर, यहाँ पर जैन जनरल स्टोर, पाकिस्तान जनरल स्टोर से आप किसन के प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। डबरा में अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं या डबरा के आसपास के इलाकों में और आपको किसन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का दिल करता है तो जनाब जिया जनरल स्टोर, शेख औता

लेकिन इसके अलावा मंसूर जनरल जो कि हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूटर है टांग के अंदर सदाम प्लाजा के अंदर जनाब, आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको केसर नेचुरल पाकिस्तान के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और आप इनसे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आप डेर इस्माइल खान में मौजूद हैं तो डेर इस्माइल खान में हर जगह आपको हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं। जफराबाद में है तो हाजी जनरल स्टोर है, उसके साथ साथ जो है अब्दुलरहमान अल फैसल मार्केट में अब्दुलरहमान जनरल स्टोर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। दराबन चुंगी पर मौजूद है तो यहाँ पर आड़ा रोड के ऊपर खान कॉस्मेटिक है मौलाना अलाउद्दीन साहब के मदरसे के सामने, वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आप फिर से बड्डे पर मौजूद हैं तो जो है वहाँ पर जाहिद शॉपिंग सेंटर है, साथ में फैसल गिफ्ट सेंटर भी है और मज़ार वाली गली में, ठीक है जनाब, मज़ार वाली गली शेयर से मज़ार वाली जो गली है वहाँ पर है उमर जनरल स्टोर, आप यहाँ से हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। बाजार के अंदर जैसे कि अमान आरसेरा फारूक आरसेरा फैमिली शॉपिंग सेंटर और शीश महल और जितनी भी दुकानें हैं सब पर आपको किशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहाड़पुर में मौजूद हैं तो जनाब वहाँ पर हर एक दुकान के ऊपर जैसे कि हम बताते हैं कि हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पर अवेश जनरल स्टोर, आप वहाँ से हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जीशान कॉस्मेटिक स्टोर और इसके साथ साथ नवीद कॉस्मेटिक स्टोर, ए वन कॉस्मेटिक और इसके साथ साथ जो है बिस्मिल्ला कॉस्मेटिक, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताजमहल, इनाम भाई की शॉप, यहाँ पर भी आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप मौजूद हैं रंगपुर अड्डा के ऊपर तो यहाँ पर हैदर मेडिकल स्टोर एंड हसीब जनरल स्टोर, यहाँ से आप केसन

0: मदीस आमिन कराम, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के अंदर अपनी आरा, अपनी तजावीज़ और अपनी शिरकत को यकीनी बना सकते हैं। हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद होगा, अगर नहीं है तो इस नंबर को अपने पास
1: मुझे सासी
0: जनाब हमारा नंबर अपने पास सेव कर लीजिए, 0333-0344-9366-3666
1: तेरे
0: 0300-44-936-33-36-66। जी
1: जहां
0: हम इस नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपनी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे नजर पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को खरीदने का बेहद शुक्रिया। जो प्रोडक्ट आप अपनी नीड के मुताबिक हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं और उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर एक चीज़, एक प्रोडक्ट जिसका हम आजकल आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, वो केसन की हेयर केयर जोड़ी है, यानी केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू की जोड़ी। गर्मियों में क्यों हम इसको आपको ज़्यादा कहते हैं कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा फ़ायदे हासिल करें, क्योंकि जनाब गर्मियों के निस्बत सर्दियाँ जो होती हैं, मौसम ठंडा होता है तो लोग नहाते नहीं हैं, बहुत कम नहाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल का इस्तेमाल सर्दी के अंदर लोग बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन गर्मी के अंदर चूंकि हर रोज़ बंदा हर रोज़ नहा रहा होता है, तो ऑयल की आप जितनी क्वांटिटी अप्लाई करते हैं अपने बालों के ऊपर, अगर उसका दौरानिया ठीक हो, एक दिन छोड़ कर हो या डेली भी हो, लेकिन 7-8 घंटे धोने के बाद, ऑयल लगाने के बाद, ऑयलिंग करने के बाद, यानी कि जब आप ऑयल कर लेते हैं अपने बालों में और उसके बाद अगर आप इसे धो लेते हैं, 7-8 घंटे मिलती है। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको बालों का मसला है और आपके बालों की लंबाई कम है, आपके बालों की जो घनापन है वो कम है, बालों के अंदर चमक नहीं है, बालों के अंदर शाइन नहीं है, या बालों के और प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, या फिर आपके बाल घुंघरियाले हैं, या फिर आपके बाल कमज़ोर हैं, जड़ों से कमज़ोर हैं, दिखने में कमज़ोर हैं, सेहतमंद नहीं हैं, तो आप इस गर्मी के सीज़न के अंदर, ठीक है जनाब, इस गर्मी के सीज़न के अंदर रोज़ाना ऑयलिंग करके आप अपनी स्किन को, आप अपने बालों की स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, 0344-936-3366 के ऊपर एक कॉलर हमारे साथ हैं और उनको मौका दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ सोनिया, आप एडियर इस्माइल खान से मौजूद है, आप ये कैसी हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
2: बहुत प्रोग्राम अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुन के बहुत मालूमात में इजाफा होता है, आपकी बात से बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत इस पर बहुत काम करते हैं।
0: चलो जी बहुत शुक्रिया। आप
2: रमजान का प्रोग्राम हो या ये, दिल को बहुत खुशी होती है, बहुत
0: इंशाल्लाह आप अगले 7-8 दिन भी हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह इस दफा आप लोगों को हम,
2: मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ और अल्लाह आपको इस जहान में भी उस जहान में भी ढेरों कामयाबियां अता करे।
0: आमीन आमीन सुम आमीन। आप जैसी बहनों की दुआएं भाइयों के साथ हों तो उनकी दुनिया और आखरत दोनों संवर जाते हैं, और ऐसी बहनें अल्लाह ताला हर किसी को अता करे जो अपने भाइयों के पीछे इस तरीके से दुआएं करती हैं। तो तीन खलीफा की शहादत आपने हमारे प्रोग्राम से सुन ली या सिर्फ आज का प्रोग्राम सुना? तीनों की सुनी आपने?
2: मैं आपको कई बार बता दूँ, मुझे ऐसे प्रोग्राम और ऐसे मालूमात प्रोग्राम ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे बच्चे तो आजकल नहीं सुनते, क्योंकि मुझे बहुत लगते हैं ये, मैं बच्चों से कहती हूँ कि ये ना ये जो प्रोग्राम देते हैं ये हमारे बच्चे जो इनके काम आते हैं ये वाली मालूमात ना।
0: जी बिल्कुल, तो आपने सुन लिया तो जहरी बात है आपके भी जहन नशी हो जाती हैं ये बातें, तो आप उनको बिठा कर, हाँ आप उनको अगर उनके पास इतना टाइम नहीं होता लेकिन आप जब सुन लेती हैं तो खुलासा आपके जहन में आ जाता है, फिर अपने बच्चों को बिठा कर आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई क्या है। तो उस दिन मैं, मेरी बेटी जिक्र कर रही थी कि बाबा ये जो है ना ये घोड़े का क्यों जिक्र आता है इमाम हुसैन के इसके अंदर ना, तो मैंने उनको बिठा कर फिर बिठाया कि ये जो है हज़रत इमाम हुसैन के अपने घर का जो है अपना एक घोड़ा था, उनके घर का, घर की सवारी थी। मैंने कहा जिस तरह हमारे पास मोटरसाइकिल होता है इस तरह की सवारी होती है, तो जुलजना जो है ये उनका अपना एक सवारी थी, घर की सवारी थी। तो बच्चों को नहीं पता होता ना, तो आप उनको प्यारे तरीके से उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ समझाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक यू। ओके जनाब, सब सुनने वालों के सलाम। और हमारे साथ इस्लामी प्रोग्राम जितने भी हम करते हैं, सोनिया आप ही बड़े दिलचस्पी से हमारे प्रोग्राम को सुनती हैं और सराहती भी हैं और दिल से पसंद करती हैं प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया इनका। और ना सिर्फ ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं सुनती हैं, केसन को दिलो जान से चाहती हैं, और इनको जब दर्द होता है, घर में कोई तकलीफ होती है तो शिफा दर्द लेके जाती हैं, बालों में मसला होता है तो केसन हेयर ऑयल और शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं, और अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम हो तो केसन की नाइट क्रीम, ज़ाफ़रानी क्रीम या फिर मिल्की सोप या फिर ज़ाफ़रानी सोप, यानी कि हमारे लिसनर जो है ना, हमारे जो फैंस हैं वो सिर्फ प्रोग्राम की हद तक फैंस नहीं हैं, ठीक है जनाब, वो प्रैक्टिकली हमारे फैंस हैं, सिर्फ केसन के प्रोग्राम के फैंस नहीं हैं, वो केसन कंपनी के फैंस हैं, और सिर्फ प्रोग्राम को प्यार से नहीं सुनते बल्कि हमारे प्रोडक्ट्स को भी प्यार से सुनते हैं, और बहुत अच्छे से लंबे अरसे से सुन रहे हैं। इन सब लोगों की बेपनाह मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, और इन्हीं कस्टमर्स की वजह से, ये तो एक हमारी आप ही हैं, इसी तरीके से साइलेंट लिसनर हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है जनाब, खामोश लिसनर जो हैं वो केसन नेचुरल पाकिस्तान की की मैं कहता हूँ कि रेवन्यू में जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, कि ऐसे प्यारे लोग के जिनका आप नाम भी नहीं सुनते हैं, लेकिन वो केसन की मोहब्बत में,
1: काफिला
0: खलील ताबे शवान की मोहब्बत में, हमारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स की मोहब्बत में
1: कतिया
0: केसन को खरीदते हैं, और केसन से ढेर सारे फायदे हासिल करते हैं।

0: जनाब, आप हमें SMS के ऊपर याद कर रहे हैं जनाब, आप लोग एक मैसेज है, सलाम भाई कैसे हो, मैं दानियाल अहमद डी खान से भाई। हमारा हर क्या कह रहे हैं, नात प्ले कर दें लास्ट में,
1: बढ़कर
0: अब्दुल्ला खान, कमराना, आमिर अवान, मासूमा, अनमोल और RJ AD को सलाम कह रहे हैं
1: पेश
0: जनाब।
1: है फिर
0: जी जनाब दानियाल, बहुत शुक्रिया। और नाते ही प्ले हो रही हैं और हमारे शो के अंदर तो साल के 12 महीने ही आपको नाते सुनने को

0: जी जनाब, आप लोगों के मैसेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं और एक कॉलर है इस वक्त जी हमारे साथ और उनको मौका देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर खलील खान।
0: जनाब मेंबर शाहजहान सारे नाल मौजूद इन सही कि में हाल है? ठीक ठाक है तुसा?
1: शुक्र है सर अल्हम्दुलिल्लाह। तुसा सुनाओ।
0: जुमा तुहाडा सही गुजरता पी? अच्छा गुजरता पी? प्रोग्राम सुनदे पे वैसे स्टार्ट कोल?
1: माशाल्लाह माशाल्लाह हां सुन ले पे आजकल प्रोग्राम दे बात।
0: अच्छा जी माशाल्लाह, तो को पसंद आंदे पे सारे प्रोग्राम ऐसे?
1: माशाल्लाह बहुत प्यारे प्रोग्राम करे ने पे सारे।
0: चलो अल्लाह पाक मजीद ही सब तौफीक देवे ते अगले जेरे 7 दीवार आए ने मजीद इंशाल्लाह तुसा मुहर्रम दे हवाले नाल खुसूसी सारी ट्रांसमिशन जारी रासी।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक सब कामयाब करे ते अल्लाह पाक सब तरक्की देवे डबल ट्रिपल।
0: आमीन आमीन सुमा आमीन। केसन को इस्तेमाल करें दे वदे वैसे ही?
1: माशाल्लाह सर माशाल्लाह।
0: केसन दी केरी शे आजकल तुहाडे इस्तेमाल इच वदी? उवें ते तुसा बहुत सारे शे इस्तेमाल करें दे वे, लेकिन आजकल ज्यादा जोर केरी प्रोडक्ट उते है तुहाडा से?
1: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਰੀਮਾ ਦੁਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੂਟਾ ਵਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨ ਜ਼ਫਰਾਨੀ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੀਨ ਦੁਆਰੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ?
1: ਜੀ ਜੀ ਦੁਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪਰ।
0: ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੇ ਉਸੋ?
1: ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਰਪ ਵੇਟ ਕਮ ਬੱਕੀ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
1: ਤੋ ਜੋ ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕ ਆਫਿਸ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹ ਫੱਕੀ ਹੁਣ ਮੁਕਾਲਾ ਲਈ।
0: अच्छा जी, असा तो सैंपल भेजा है बिल्कुल हाजमा कंट्रोल सारा जी सिरप है ऊ ऐसे ही फक्की भी तैयार करें दे पे ऐसे कुछ लोगों को सैंपल देते ऐसे तो ओ सही सैंपल तो को किवें लगे सही हाजमा कंट्रोल फक्की दा सैंपल?
1: जबरदस्त रिजल्ट है सारों दा बहुत बेहतरीन।
0: अच्छा तो सब को इस्तेमाल करें एक चम्मच इस्तेमाल कीता वे या ज्यादा?
1: ना ना एक चम्मच सर।
0: एक चम्मच रोटी दे बाद इस्तेमाल खाने दे बाद कीता होसी ता किवें महसूस थिया होसी कि कोई भी मसला होसी फौरन हल थी गया होसी? अच्छा चलो, तो कोई इतनी अच्छी लगती पे दो चार बै लोगों ने सबको आख्या तो इनशाला फ्यूचर के इनशाला जिम्मे सिरप सारा मौजूद है हाजमा कंट्रोल का तो फक्की भी इनशाला इनशाला लॉन्च करे तू ठीक है सही? वो एक टेस्टिंग है सारा फेज है असा चलो टेस्ट करके फॉर्मूला सारे को आ चुका है तो असा चलो बढ़वा के लोगों को जरा टेस्ट करके तो लोगों को बहुत पसंद है सही बहुत ज्यादा। अकबर जारा
1: अकबर जारा वो भी खिना से दूजा वो वेट कम वाला वो मुका जो ही खिना।
0: चलो माशाल्लाह, बस मतलब रूटीन तो अभी चलती पई है घर प्रोडक्ट अंदर पेन ते प्रोडक्ट।
1: जी जी जी जी अब प्रोडक्ट चले हो या ना हो कैसा वाला सामान तो सारे वास्ते जरूरी बन करे सर।
0: बहुत मेहरबानी सी मोहब्बत इन तरह से बहुत मेहरबानी शुक्रिया नवाजी
1: बहुत मेहरबानी
0: आगे जना थैंक यू सारे सुनाना को सलाम मेंबर

0: जी जनाब, एक कॉलर आप लोग की मैसेजेस भी हैं, और आज
1: सर
0: मुहर्रम का एक खास दिन है, और आज के दिन जो है एक अहम वाक्या रुनुमा हुआ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, खैरियत है सलील भाई?
0: जनाब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना जनाब?
2: अमन बात कर रहा हूँ, रईस रमीवाल और
0: अच्छा जी,
2: आपका
0: कहाँ से, टांग से सुन रहे हैं आप?
2: लेने पे। हाँ
0: अच्छा जी, टांग को लेने पे। क्यों हाल है? सही चंगे वे देवे, ठीक ठाक खरीयत नाली वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम सुन दे पे शुरू को जो होने होने ट्यून की तरह एफ एम, मैं के शुरू को प्रोग्राम सुन दे पे वे। अच्छा की वे सारी तरतीब पसंद आनी पे तो कुछ अच्छा जी, तुसा इस्तेमाल की थी वे हाजमा कंट्रोल सारे केरे केरे प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी वे देवे तुसा? अच्छा ये शिफाय दर्द तेल इस्तेमाल की थे तुसा? के मसला आई सही तो आपको दर्द केरी जाते दर्द आई तो आपको? अच्छा कितने नहीं तो फर्क आया हूँ चलन फिरन मसला तो ना हो सी तो आपको? चलो माशाल्लाह। ते हाजमा कंट्रोल सिर्फ बद हजमी है या भूख नहीं लगती के मसला आई तो आपको? अच्छा मैदी तकलीफ भी दूर थी गई तो हूँ भूख लगनी शुरू थी गई तो आपको? चलो अच्छी गल है, यानी कि केसन दे दो प्रोडक्ट तुसा इस्तेमाल किए तो आपको तो नहीं लगा कि तुम्हारे तो पैसे जाया थी गए? हाँ अगर उन्हें तो वजन ज्यादा है, मोटापा है या पेट निकला है तो बिल्कुल वेट कम पेट कम उन्होंने को घिनवा दो इनशाला 15 दिन के बीच फर्क महसूस थी सी। जी वालेकुम अस्सलाम।
2: रहमान हकानी बोल रहा हूँ।
0: जी जी अब्दुल रहमान साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक है
2: मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैंने बेलो का और बकरी को ले लिया ताकि बेलो मेरे पेट कम हो जाए।
0: हाँ हाँ
2: वैसे वैसे जब हम दर्द में बैठे होते हैं ना, बाहर आ जाते हैं लोग कहते देखो मौलिक को हराम सारा चमक के है।
0: ऐसे ही है बिल्कुल, कहते हैं पेट ज्यादा निकला हो तो फिर इस तरह के। बिल्कुल,
2: और
0: आप
2: सर
0: आपने अभी तक खरीदी तो नहीं है ना? हेलो, बस आप इस्तेमाल करें एक चम्मच, आपने सुबह खाली पेट लेना है नाश्ते से पहले, और एक चम्मच रात को खाने के आधे घंटे बाद, ठीक है? इस तरीके से खाएंगे, एक चम्मच खाली पेट और एक चम्मच जो है रात को खाने के बाद। ये जो खाली पेट वाला चम्मच होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपकी चर्बी को यही पिघलाता है, आपके पेट को कम करेगा और आपको स्मार्ट बनाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जनाब? ठीक है जनाब, कॉल कर चुकी है इनकी, और ये कहते हैं कि भाई बिल्कुल ऐसे लोग कहते हैं ना कि भाई मौली बंदा अगर उसका पेट निकला हो तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन केसन वेट कम पेट कम को जो आप यूज करेंगे इंशाल्लाह, ये जो हमारा ये हमारी फक्की है बेसिकली, इसके यार इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि मैं ये कहता हूँ कि इसका एक फायदा मैं आपको बताऊं जो कि आम रूटीन से हटकर है, वो इसका जार है। ठीक है ना, इसका जार इतना खूबसूरत है, बाकी फकियों के सफेद रंग के होते हैं, कमजोर से हल्के फुल्के से होते हैं, ये इतना जबरदस्त जार है कि अगर आप घर में लेकर आ गए तो आपकी अम्मी ने आपकी वालदा ने पहले तो ये कहना है कि बेटा ये कब खत्म होगा, क्योंकि वो उनकी नजरें उस जार के ऊपर आ जाती हैं, और वो जार चीनी रखने के काम आता है, चाय रखने के काम आता है, इलायची रखने के काम आता है, हल्दी रखने के काम आता है, यानी कि किचन का वो आइटम है। एक भाई हमारे पास आते हैं, उनका पेट का बड़ा मसला था, तो वो मेरे ख्याल में कि चौथी पांचवी है ना ये जार लेके जा रहे हैं, फक्की का बड़ा जार जो महीने वाला होता है। तो इस दफा जब आए तो कहते हैं कि यार ना चौथा दिन है, मेरी बीवी ने मेरा सर खाया हुआ है कि तुम्हारा ये फक्की वाली फक्की कब खत्म होगी, फक्की कब खत्म होगी। तो मैंने कहा क्यों, क्या मसला है? तो वो कह रहा था कि यार वो ब्यूटी पार्लर वाली है तो उसे ऐसे जार चाहिए होते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं क्या कहूँ, 2 ही चम्मच मैंने खाने होते हैं, 4 मैं नहीं खा सकता, जब खत्म होगा तो मैं आपको इसके हवाले कर दूंगा। तो ये तो मैं आपको गपशप में बोल रहा हूँ कि इसका इतना फायदा है कि आप इसके जार भी नहीं फेंकेंगे, वो घर में इतना काम आता है, लेकिन इसके सेहत के हवाले से बहुत सारे फायदे हैं। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम
2: आपके साथ और
0: जी।
2: पक्की जांच ही मिलेगी हमें।
0: ये टांग में आपको, मैंने आपको दुकानदारों के नाम बताया ना, ये आप सदर सदाम प्लाजा में चले जाएं, वहां पर है मंसूर जनरल स्टोर।
2: मंसूर जनरल स्टोर
0: हाँ, सदाम प्लाजा, ये बिल्कुल जहां पर
2: जानते हैं?
0: ट्रैफिक चौकी है ना, ट्रैफिक चौकी के साथ ही है, टांग में जो ट्रैफिक चौकी है
2: अच्छा
0: वहां पर जाएंगे, मंसूर से कहेंगे, एक 15 दिन वाली है, आपको मेरे ख्याल में 350 में मिल जाएगी, वैसे 400 रेट है, वो होलसेल रेट के ऊपर आपको अच्छा रेट देते हैं, और बड़ी जो है वो 700 की आपको मिलेगी
2: अच्छा
0: जी।
2: बस। और गुर्दे में कुछ निशान तो नहीं दिया गया
0: नहीं
2: ना?
0: नहीं नहीं नहीं बिल्कुल, अभी तक हमें कोई 6-7 महीने हो गए हैं, इसके फायदे ही फायदे लोग हमें बता रहे हैं, किसी किस्म का कोई डैमेजिंग, कोई इस तरह का गुर्दे का नुकसान या कोई और मसला अभी तक कोई भी हमारे सामने किसी एक का भी नहीं, हालांकि हजारों पैक हम इसके बेच चुके हैं, और जो भी खरीद रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर मुस्तकिल इसको ले रहा है।
2: अच्छा दूसरे काल ये नरम तो सुना हो वेल्थ रेडियो पे हकानियत अभिलान दखल हकानियत दी हर कर कहो से दखल सलाहियत दी।
0: अच्छा, ये कोई कलाम है, मन की बात है कोई?
2: हाँ मन की बात है इसका, जिसका कलाम आवाज जिसका है उसका नाम है अब्दुल हकीम सज्जाद दरस दाऊदी आवाज मालिक।
0: चलो हम सर्च करते हैं, अगर मिल जाती है तो जरूर प्ले कर देते हैं, ठीक है जनाब? ओके जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जी, ये जो हमारी वेट कम पेट कम पक्की है, ये आप इस्तेमाल करके तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका हाजमा बहुत अरसे से खराब है ना भाई, इसको इस्तेमाल करें, एक बहुत ही मुजरब किस्म का ये फार्मूला है, ठीक है जनाब? बाकी ये आप इस्तेमाल करेंगे वेट कम को पेट, बेसिकली ये वजन को कम करने के लिए है। और अमीर हुसैन है हमारे साथ जनाब, परदेसी हाँ अल्लाह रासी हाँ, नाते वतन को लूँ नाले वतन को लूँ, बहु दूर हाँ मैं पाक रसूल दा दो तरह हाँ, ना मारो ना मारो बाज कसूरा, नाने दा दीन बिछाओ बचावना है, इस गाल तू बहु मजबूर है, करम बैत अमीर क्यों फासिक दी, मैं चश्म नबी दा नूर हाँ जी। बिल्कुल, जब इमाम हुसैन को पैगाम दिया गया ना कि यजीद कह रहे हैं कि मेरी बैयत करो, बहुत प्यारा जुमला कहा उन्होंने कि मुझ जैसा तुम जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा, ठीक है जनाब? क्योंकि जो यजीद का एक तो ये बात थी कि जो खिलाफत थी वो मुलुकियत में तब्दील हो चुकी थी, यानी कि अमीर माविया के बाद मुशावरत से नए खलीफे ने बनना था ना, पहले तो जाति ये हो रही थी उम्मत के साथ कि निजाम बदल रहा था, एक तो ये चीज उनको गवारा नहीं थी हजरत इमाम हुसैन को। दूसरी बात ये थी कि यजीद का जो मकसद था ना इक्तदार का, वो इस्लाम की तरक्की नहीं थी, वो सिर्फ इक्तदार का भूखा था,

0: क्या है आए हबीब, तुम हमारी मोहब्बत और रसूलुल्लाह से हमारी निस्बत को अच्छे तरीके से जानते हो। हम करबला में महसूर हैं, ख्वातीन बच्चे मेरे साथ हैं, अगर तुम हमारी मदद कर सकते हो तो जल्द करबला पहुंचो।
1: हबीब इब्ने मज़ाहिर जो
0: हमने कहा ये अल्फाज पढ़कर हबीब की कैफियत बदल गई। कहा जाता है कि वो बार बार खत को चूमते थे, पढ़ते थे और कहते क्या मैं जिंदा रहूं और फरजंदाने रसूल मदद के लिए पुकारे और ये कैसे हो सकता है, और ये कैसे हो सकता है। सामिन इकराम, इस वक्त हबीब इब्ने मज़ाहिर की उम्र 75 साल थी। बुढ़ापा, कमजोरी और यजीदी हुकूमत का खौफ भी उन्हें ना रोक सका। उन्होंने अपनी अहलिया को सूरत हाल बताई, अपनी बेगम को सूरत हाल बताई। बाज़ रिवायात में आता है कि उनके अहलिया ने कहा आप पर कुर्बान जाऊं, अगर फज़ंदे रसूल ने बुलाया है तो देर ना कीजिए।
1: ये दोस्ती को खुदा का इनाम कहते
0: हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर रात के अंधेरे में कूफा से निकले ताकि दुश्मन की निगाहों से बच सके। कई मील का सफर तय करके आखिरकार करबला पहुंचे। जब इमाम हुसैन ने अपने पुराने साथी को आते देखा तो खुशी का इजहार फरमाया। खैमों में भी खुशी की लहर दौड़ गई कि एक और जान निसार आ गया है। अमरिकराम, आशूरा के दिन हबीब इब्ने मज़ाहिर ने बेमिसाल शुदा शुजात दिखाई अपने दोस्त के लिए, खानदान रसूल के लिए। बुढ़ापे के बावजूद जवानों की तरह लड़ते रहे। जब वो मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने मोहब्बत भरी निगाह से देखा और कहा देखा। हबीब ने अर्ज किया मौला अगर जान एक के बजाय हजार बार भी मिले तो आप पर कुर्बान है। आखिरकार वो लड़ते हुए शहीद हो गए। रिवायात में है कि उनकी शहादत पर इमाम हुसैन को बहुत सदमा हुआ और फरमाया हबीब हबीब तुम बड़े बावफा साथी थे।

जनाब, ये है केसन अज पाकिस्तान का प्रोग्राम और केसन की ढेर सारे प्रोडक्ट जो आपको ढेर सारा फायदा पहुंचाते हैं आपके इलाकों डेराटांग और पहाड़पुर में हर बड़े स्टोर, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर पर मौजूद हैं और आप उनसे प्रोडक्ट हासिल करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपकी नीड है, जो आपके चाहिए, खरीद करके जनाब अपने आपको ढेर सारा फायदा पहुंचा सकते हैं। पहाड़पुर में हमें कुछ लोग सुन रहे हैं, हीरा सुन रही है हमें।

जी नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आई एम हीरा एंड फ्रॉम पहाड़पुर सर। शो बहुत ही बेस्ट है एंड केसन की हर प्रोडक्ट का रिजल्ट लाजवाब है। क्लास में अरूबा, वफा, फातिमा, मानूर, हिना, गुल, फातिमा एंड सब सिस्टर्स को सलाम।

जी पहाड़पुर एफएम वालों, भाई रेडियो पैगाम वाले, आज आप लोगों की लिसनर्स की कंप्लेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कि शोर बहुत ज़्यादा है, और इवन के जो है हमारी आवाज़ रंगपुर में भी नहीं जा रही है। अनस भाई राना एजाज, वेरी ब्रो, चलिए इस शो के अंदर तीसरी कंप्लेंट है कि पहाड़पुर एफएम की आवाज़ अब बहुत ही कम है आज, और रंगपुर तो 6-7 किलोमीटर के फासले पर है पहाड़पुर से। ये कहते हैं कि खलील भाई आज एफएम पर शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, रंगपुर की तरफ आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही है। खान जमान जंजुआ जो है हमारे साथ मौजूद है। आज का प्रोग्राम तो गुजर गया जैसे तैसे, होपफुली जनाब रेडियो प्रोग्राम की मैनेजमेंट अपनी पोजीशन को देखेंगे कि क्या वजह है कि आवाज़ क्यों कम जा रही है, लोगों तक सिग्नल्स की क्यों सिग्नल ठीक नहीं है, लोगों को आवाज़ साफ क्यों नहीं सुनाई दे रही। हालांकि अभी तो अपग्रेडेशन हुई है पहाड़पुर एफएम की, और कंप्लेंट तो बिल्कुल भी कोई नहीं होनी चाहिए थी। एनी हो जनाब, इसको ज़रूर देखिएगा और कि क्या वजह है कि आज बहुत सारे लोगों को पहाड़पुर में दिक्कत हो रही है दूर दराज के इलाकों से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम खलील भाई, हाजमा कंट्रोल सिर्फ कहाँ से मिलेगा, कैस लक हूँ नोरंग लक से, सब सुनने वालों को सलाम। अच्छा जी, ये कहाँ पर है नोरंग वगैरह, पहाड़पुर टांग में मौजूद हैं। अच्छा जी, रियाज लक कमरान खलील भाई कैसे हो, कैस लक हूँ जिला नोरंग लक से, अजहर और मजहर और सबको सलाम। पहाड़पुर में मौजूद है तो जनाब किसी भी स्टोर के ऊपर जाएं जहाँ से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलते हैं, जहाँ से आपको जनरल प्रोडक्ट मिलते हैं, वहाँ पर आपको केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप, यानी कि हाजमा कंट्रोल सिरप है, लेकिन ये चूंकि केसन की प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, सो आप कॉस्मेटिक स्टोर से भी हासिल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। 4 मुहर्रम के वाकयात के साथ कल हाजिर होंगे, कल तक के लिए इजाजत।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
4: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे, अवेलाजी सुनत अमल दे।
5: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो, ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो।
4: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ, मायूस के गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे, तरला सकवले शे।
5: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
4: 0319-55-23-404।
6: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।

दो तीन चार जीरो चार मलंग से अब्दाल अंबर नोट का ग्रहण और दिन को बिल्कुल तासो प्रोग्राम और दया खबर मलगलरे दा प्रोग्राम रोजाना तासो 6:10 नवाखला 7 बजे पर है और दे प्रोग्राम से मुसर तावन मरस्ता सिलवी अलशिफा दवा खाना पशवाल मार्केट टांग से मौजूद है बिल्कुल सबा बहुम हकीम से पखपल दवा खाने से मौजूद भी चौकुम दे हकीम साहब खा तराता गुआड़ो हकीम से बिल्कुल प 8:30 बजे नवाखला मजगर 4 बजे पर पखपल दवा खाने से मौजूद भी शवाल मार्केट टांग से अलशिफा दवा खाना बिल्कुल दे प्रोग्राम टे मुठ सर सर तरह से दिला दा चिचा काल नवी अट मुठ अटन कड़ाई या चा मिसिन नवी शमसला ना गोंड पा गोड़ माजरात इंशाल्लाह का जिंदगी बा सबाब अभिया पा दे प्रोग्राम से ताव सामुझ मुलाकात की तरगे वक्त पर माता और मासरा नास ग्रान अकीम से अकीम मौला नुरुलदा से तरह को इजाजत चेर था वो सो खुशहाल वो सो आबाद वो सो फी अमानिल्ला रेडियो अमन जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।

0: से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4.
2: होरे दुकान था इधर सर नोट का मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर हैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 मंगल मिला।
3: गुलोनी होरिस तापुंदे हो माह के डेर इजियाते हारा बेवे नु दुम रजर सिंगर टिक्शुले यह होरे इन होरे माह हो माह के डेरो कपनो क्रिक क्रिक में इस्तेमाल करल हो माते ही सु रिजल्ट ओ फायदा न कड़ारा अब चिकला मा उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्रिक क्रीम रावड़ल नु माते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रज गुलोनी हो रे जे हम जान द पारा रावड़म इश्म क्रिक क्रीम پتاسو ہم واڑو چی مونگا پوند صفا سترا او حیثشی نیو زل ضروری

0: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल आयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल आयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
1: गुलोनी होरिस्ता पुंदे हमाह के डेरी ज्याते हरा बेवे नु दुम रजर सिंगर टिक्शुले यह हो रहे हो रे माँ हमाह के डेरो कपनो क्री क्री में इस्तेमाल करल हुमा ते ही सु रिजल्ट और फायदा न कड़ारा और चिकला माँ उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्री क्रीम रावल नु माते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रज गुलोनी हो रे जय हम जान द पारा रावड़म इश्म क्री क्रीम कता सो हम वाड़ो चिमुंग पुंद सफा सुथरा और हिस्तशी नयो जल जरूर इस्तेमाल कई इश्मा क्रैक क्रीम।
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्मा हटक फ्रॉम अंधेरी कला कर। मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से इश्मा एक्ने ट्यूब और इश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और दाग धब्बों से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। अब मैं तमाम रेडियो लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें या टोटके आजमाए हों और फिर भी कोई रिजल्ट न मिला हो तो एक बार जरूर इश्मा एक्ने क्यूब और इश्मा एक्ने सोप आजमाइए। इश्मा एक्ने क्यूब

0: जमील खाना विले खफा है।
1: इंजीनियर भाई खफा बवाले नहीं हम खुलेन में बदबूजी गाखुन में होम जेड भी और चिकल टूथब्रश कवन नवराई में भी ना होम कवी।
0: जमील खाना देता अफगान इस जरूरत रखता
1: वाह इंजीनियर भाई इश्मा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद।